केशर कागेश्वर बागेश्वर फनल मणेश्वर पाटन कुम्भेश्वर सुनकोटी शर्मा रहे किभ्रिंगेश्वर लेले मतिलेश्वर जय गर दर्शन प्रभु करुण छलिला उनै को चल चोर प्रभु विषय अरुका कुनै को।

लागी रानी पांडव बीच का भाई बीच मा सादा थीन द्रौपदी छोरा पांच पराक्रमी होना गए ती द्रौपदी का पछी रानी अर्जुन की पछी होना गई बहनी जमुना की नारायण।

सुनि वसुदेव ते पगी पानी दे हंता हुदा भये। यो सुनि करत जी वशिष्ठा गुरु ले यो वाता वंदा भये। नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सेजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुन पुन मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन बाइस कुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीको दोलखा।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: जी पापा
1: हाँ बिटुआ वो हमारे गांव को मंगली सनी वो अले काठमांडू आया था बस पार कर लिए रहा यहाँ
0: हाँ पापा वो इस साथी गांव वाटो मंगली आई रहा था लीने जाम ना
2: तू कूरे
0: मंगली जाम ना जाम हे प्लीज जाम ना जाम क्यों सब बिर्सियो की क्यों पहला
2: उनसा लाइन

0: नागेश्वर गोपी तलाव भेट द्वारका बिंदु सरोवर मातृ गया पिंडदान पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मंदिर ब्रह्म सरोवर अमदा देवी दर्शन वृंदावन मथुरा गोकुल रमन रेती काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिंडदान चौरासी घाट दर्शन प्रयागराज अंतिम गंगा स्नान श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश खाना बस्न ऑटो रिक्शा डुंगा सहित संपूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ समय अवधि 42 दिन रहनेछ प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी सम्पर्क नम्बर 9841870793 9841870793 सादो बाटो चरीकोट दोलखा महादेव महान
1: भोले सदा शिव शिव शंकरा। यो रेडियो सैलुङको समय सूचक हो। यति बेला साँझको 6 बजेको छ।

ओड़ा का घोड़ा प्रदेश का बाग केन्द्र महाती छन। ओड़ा का घोड़ा प्रदेश का बाग केन्द्र महाती छन। जेसुके गरुण बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्। जेसुके गरुण बोल्दैनन् जनता ज्यादै नै जाति छन्। कसरी सुध्रिन्छ यो देश कसरी सुध्रिन्छ।

0: नमस्कार।
1: रेडियो सैलन समुदाय के फिर पहले में थोपलो साथ में गया बाटो मुबद्ध प्रसाद साहब को आज विक्रम संबत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 28 तारीख आश्विन 12 गते सोमवार द्वितीय तिथि।
0: अब स्तुति करूं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी

राजा नवश काय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडाखुन सवाले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी हवस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी हवस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान हवस सुजनमा मनुन बढ़ाले पने कृति उज्ज्वल होस सुत सहित का

वर्मन का लड़का बने हनुमान जाऊते को वन भनी जानते क्या मन में सप वरी परी हेरेर ढोड़छन् अनि आज्ञा पाएर हनुमान जीले दर्शन प्रभु को गरे बोको शेर रघुनाथलाई पनि खुब आफ्नो स्वरूप झट धरे राम्रो छु मान कन पोकी जल्दी हनुमान सूरीबाको पासामा पहुँचाऊ रघुनाथलाई पनि खुब कुदे ती आकाशमा जल्दी पर्वतको उपर पुगी गए छाया बिसे राम रहे सूर्यलाई खबर दिन भनी ता जल्दी हनुमान गए आज्ञा पाएर सूर्य बजीले दर्शन प्रभुको गरे आँगा कोमल भाँची आश्रन दिए आनन्द भाँती परे आश्रन सूरी बलाई लक्ष्मणजीले दिए हनुमानले

मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दश जोदायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानकी सुनि र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम्रो उजागर, रामदूत अजुल दबलधामा, अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बर्ज और ध्वज विराजई, कांधे मुझे जनेव साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप दरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, हेम रूप दरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहज बदन तुम्हारे जस गावे, अज कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव किना, राम मिलाये राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताई मधु फल जानु, प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुगर तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखबारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगदो जियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमन निधि के दाता, असवर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से सर्वसु करई, संकट कटई मेरे सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किजनाथ हृदय महडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप, सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा, जय हनुमान जय बजरंगबली।